साची नाई। है भी होसी जाए न जासी, रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी, माया जिन उपाई।

सगल द्वार को षाड कह गए हो तुहारो द्वार, बाहे गए की लाज अस गोविंदास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माई, सतगुरु मैं पाया सतगुरु ता पाया, सहज सेती मन बजिया बाधाइया। राग रतन पर बार पईया शब्द गावणे आईया, शब्दो ता गावो हरि केरा मन जनी वसाया। कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा। अंगीकार हो करे तेरा कारज सब सवारना, सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरे, करता तेरे सब किश है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे, नाम जिनकै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं करते रहे, साचा नाम मेरा आधारो सच नाम आधार मेरा। जन भुखा सब गवाइया कर शांत, सुख मन आए वसया जन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु बिट हो जिस दियाँ ए वडियाइयां। कहे नानक सुनो संतो शब्द रहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंज शब्द कर सपागै, कर सपागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया, तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर कै लागे। कहे नानक तै सकुआ तित कर अनहद बाजे, अनद सुनो बड़ भागे हो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सची बाणी, संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी।

श्री वाहे गुरु साहिब जी, सुनी अरदास स्वामी मेरा, सर्व कला बनियाई, प्रगट पही सगले जोग अंतर, गुरु नानक की वडियाई। सुखो टल गुर सेवियै, एहन सुसहज सुभाए, दर्शन परसियै गुरु कै,

सुख मांग मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुदे अग्रदास हमारी जियो पिंड सब।

प्रमेरे देह नाम कर अपने चेरे ज्ञान ध्यान किश कर्म न जाना सार न जाना तेरी सब ते वड़ा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी सिमर सिमर ताको हों जीवा चरण कमल तेरे धोए धोए पीमा सकहो टल गुर सेविया एहनस सहज सुभाए दर्शन परसें गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहिगुरु जी सुही महला पंजवा गुर अपने ऊपर बल जाइए आठ पहर हर हर जस गाइए गुर अपने ऊपर बल जाइए आठ पहर हर हर जस गाइए सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी सगल कटांका अंतर जामी रहाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत साची पूर्ण निर्मल रीत संत प्रसाद वसै मन माही जन्म जन्म के किल विख जाही कर कृपा प्रभु दीन दयाला नानक मांगे संतर वाला।

जी का खालसा। वाहिगुरु जी की फतेह। सूही महला पंजवा। गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पहर हर हर जस गाइए।

पृथ्वी सदिश दृश कृश भुगति छंद प्रसा कते क्या छिज देश है क्या पज भेस है क्या गंज कर्म है क्या पंज परम है क्या पज लोक है क्या सुख है क्या भूत वर्ण है विभूत करण है के राजंग प्रभा है के तरभंग तुझा है के अशोक वर्ण है के सर्वापर्ण है के जगतं कृति है के शतरंग क्षत्रिय है के ब्रह्मंग स्वरूप है के अनुपहनूप है के आद देव है के अपेव है के चतरंग विहीन है के कधीन है के रोजी रिजा करहीम मरिया कह के पाक बेअब है के गैवल गैब है के अफुर गुनाह है के शान शाह है के कारण कुनिंद है के रोजी दिहंद है के राज करहीम है के कर्म करीम है के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है के सर्वतर मान्य है के सर्वतर दान्य है के सर्वतर गौण है के सर्वतर पौण है के सर्वतर देश है के सर्व भेस है के सर्वतर राज है के सर्वतर साज है के सर्वतर दीन है के सर्वतर लीन है के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वत्र देश है के सदर भेस है के सत्र काल है के सर्वत्र पाल है के सर्वत्र हंता के सत्र गंता के सत्र भेखी के सदर भेखी के सत्र काज है के सत्र राज है के सत्र सुख है के सत्र भुख है के सर्वत्र त्राण है के सत्र प्राण है के सब देश है के सर भेस है के सत्र मान्य है सदा प्रधान्य है के सत्र जापे है के सत्र थापे है के सर्वत्र पान है के सत्र मान है के सत्र इंद्र है के सत्र चंद्र है के सर्वं कलीम है के परम भीम है के अकलाम है के सैव कला है के हुसन वजू है तमाम रजू है हमेशा सलाम है सलीखित मुदाम है गरीब सुखस्त है गरीब प्रस्त है बलंदर मकान है जमीन जमान है तमीज तमाम रिजु निधान है रिफुल जीम मैर जय यकीन है अनेकुल तरंग हैं अभेद हैं अपंग हैं अजी जो निवाज हैं गरिमुर्ख राज हैं निर्गत स्वरूप हैं त्रिमुग्ध विभूत हैं परभुगत प्रभा हैं सुख सुदा हैं सदा एवं स्वरूप हैं पेदीनूप हैं समस्त उपराज हैं सदा सब साज हैं समस्त सलाम हैं सदा बल काम हैं निर्वास रूप हैं गाद हैं नूप है ओंगाद रूप है नाद रूप है रंगी नामे त्रिपंगी त्रिकामी तिर भरगंग तिर वादे गंजे गा दे सुभंग सर भाग्य सो सर्वा नरागे त्रिपक स्वरूप हैं छिजय शूत हैं के नरकंग प्रणास हैं पृथ्वी प्रभास हैं निर्गत प्रभा हैं सदा एवं सदा हैं बेपुक स्वरूप हैं प्रजगत अनूप हैं नृकत सदा हैं बेपुगत प्रभा हैं अनुकत स्वरूप हैं प्रजगत अनूप हैं चाचरी छंद अपंग हैं अनंग हैं अपेख हैं अलेख हैं अपर्म हैं अकर्म हैं अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं अबाध हैं अभूत हैं अधूत हैं अजय हैं अभय हैं भूत हैं अधूत हैं नास हैं उदास हैं धंद हैं बंद हैं भगत हैं भक्त हैं नास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं लिख हैं दिख हैं लिख हैं पिख हैं डह हैं गाय हैं संभ हैं गंभ हैं नील हैं नाद हैं नित्य हैं सुनित हैं जात हैं जात हैं चरपट छंद प्रसाद सर्वंगता सर्वंगंता सर्वंख्याता सर्वंग्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसाव शांत प्रसन्न नरक नासे सदा एवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमार्थं परमार्थे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध भूते नंगी नामे निरभंगी त्रिकामे निरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे ना पोत्र है ना पुत्र है ना सत्र है ना मित्र है न तातन मातन जातन पातन निरसाकं श्री कमि तो मी क सदैव प्रभा है अजय है अजा है भगवती छंद प्रसाद के जाहर जहूर है के हाजर हजूर है हमेशल सलाम है समस्त कलाम है के साहेब दिमाग हैं के हुसन चराग हैं के कामल करीम हैं गिराज करहीम हैं गुरु जी हिंद हैं गिराज गृहिंद हैं गरीबन कुमार हैं के हुसन जमाल हैं गनीबल खराज हैं गरीबन निवाज हैं हरीब सिकंद हैं हरासल फिकन हैं कलंकंग प्रणास हैं समस्त निवास हैं अगंजल गनी मह जाय करहीम हैं समस्त जुबा हैं के साहेब किरा हैं के नरकंग प्रणास हैं व्यस्त निवास हैं के सर्वल गोबन्न है हमेशल रवन है तमामल तमीज है समस्त अजीज है परम परमीश है समस्त अदीश है देशल लेख है मेशल अपेख है जमीन उल जमा है अमी कुल इमा है करीमल कमाल है के जुर्त जमाल है के चलंग प्रकाश है कि मैं तो सुभाष है के अजब स्वरूप हैं कि मैं तो विभूत हैं कि मैं तो पसा हैं कि आत्म प्रभा हैं कि चलंग नंग हैं कि मैं तो भंग हैं मद भा छंद तो प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गण मुदाम अरबर गंज हंद्र प्रभंज अनगण प्रणाम मुन मन सलाम हंद्र खंड बंद्र मंडन पुनास मुन मन प्रकाश

उठाए शरीर लाए सुनो सतबाणी जे सुनि मंत्र रियाहु अरसना रसवाणी सच लख वडाणी ता की गत कही ना जाए कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो सच सुनै नू पठाई हर जियो गुफांदर रख कै बाजा पुण बजाया बजाया बाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसा गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी कंसा द्वार दिखाया तै अनेक रूप नाउ नव निध तिदंत न जाई पाया कहे नानक हर प्यार है जियो गुफांदर रख कै बाजा पुण बजाया सच सोहिला सच कर गावो गावो ता सोहिला कर सच जिथे सदा सत्य आवे सचुत्या बजन तु पावे गुरमुख जिन बुझावे सबना का खसमै बख्शे सोजन पावे कहे नानक सच सोहिला सच कर गावे कहे नानक सच सोहिला सच कर गावे आनंद सुनो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल विसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पवित सत गुर रहे।

दर्शन परसियां गुरु कै जन्म मरण दुख जाए सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी सुही महला पंजवा गुर अपने उपर बल जाइए आठ पहर हर हर जस गाइए गुर अपने उपर

सगल कटा का अंतर जामी रहाओ, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूर्ण निर्मल रीत, संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगै संत रवाला, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगै संत रवाला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सुही महला पंजवा, गुर अपने उपर बल जाइए, आठ पहर हर हर जस गाइए। सत